0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। अमरीका और ईरान मफाहमत की याददाश्त के जरिए तय की गई 60 दिन की बातचीत की मुद्दत खत्म होने के बाद भी लड़ाई खत्म करने के मकसद से बहुत दूर हैं। दोनों ममालिक ने जून में मस्कूरा याददाश्त पर दस्तखत किए थे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि ये मुद्दत 18 जून को शुरू हुई, जिसका मतलब यह है कि बातचीत की मुद्दत इतवार को खत्म हो गई। बातचीत के मौजूदात में अमरीका की जानिब से समंदरी नाकाबंदी का खात्मा, आबनाए हरमूज में बहरी जहाजों की आमदोरफ्त बहाल करना, ईरान का जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों का खात्मा शामिल था। दोनों ममालिक ने मुजाकरात के टाइम फ्रेम के दौरान एक दूसरे पर हमले जारी रखे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराकची ने कहा कि दोनों फरीकों के दरमियान कभी जंगबंदी नहीं हुई जिसमें तौसी की जरूरत हो। तेहरान ने आबनाए हुरमोस को दोबारा खोलने के लिए 6 शराइत पेश की हैं, जिनमें ईरान पर पाबंदियां खत्म करना, फौजी कार्रवाइयों से होने वाले नुकसान का मुआवजा और अमरीकी समंदरी नाकाबंदी का खात्मा शामिल है। अमरीका ने 7 जुलाई को ऐलान किया था कि उसने ईरानी तेल की फरोख्त की इजाजत देने वाला लाइसेंस मनसूख कर दिया है और 14 जुलाई को समंदरी नाकाबंदी दोबारा शुरू कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 8 जुलाई को सहाफियों को बताया था कि उनके ख्याल में जंगबंदी खत्म हो गई है। इंडोनेशिया के हुकाम का कहना है कि मुल्क के मशरकी हिस्से में हफ्ते के रोज आने वाले जलजले के नतीजे में 53 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई। फ्लोरेस जजीरे पर मैग्नीच्यूड 7 के जलजले से 200 से जायद मकानात को भी नुकसान पहुंचा था। डिजास्टर मैनेजमेंट के अहलकारों ने हलाक होने वालों की तादाद का ऐलान इतवार के रोज किया। हुकाम जलजले के मरकज के करीबी इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों को तेज कर रहे हैं, जहां सड़कें मुनकता हो गई हैं। मकानात को नुकसान पहुंचने के बाद 5,000 से जायद अफराद को नकल मकानी करना पड़ी। खुराक, पानी, कंबल और दीगर इमदादी सामान की फराहमी इंतहाई अहम हो गई है। इंडोनेशिया की हकूमत का कहना है कि उसने हफ्ते की रात तक मुतअद्दिद इलाकों में 27 टन सामान पहुंचाने के लिए तैयारे भेजे हैं। हुकूमत का मजीद कहना है कि उसने 3,500 से जायद फौजी अहलकार और पुलिस अफसरान को खित्ते में भेज दिया है। एक मकबूल जापानी हफ्त रोजा मांगा मैगजीन की सर्कुलेशन पहली बार 10 लाख से नीचे आ गई है। शुए शाह के हफ्त रोजा चोनैन जम की सर्कुलेशन कभी 65 लाख तक पहुंची थी। जापान मैगजीन पब्लिशर्स एसोसिएशन के जारी करदा आदाद व शुमार से जाहिर होता है कि जून तक की 3 माह की मुद्दत में इस जरीदे की औसत प्रिंट सर्कुलेशन 9,85,000 कापियां फी शुमारा रही। ये आदाद व शुमार अब भी मकामी जराइद में सबसे बुलंद है, लेकिन 2008 में एसोसिएशन के आदाद व शुमार जमा करना शुरू करने के बाद ये पहला मौका है कि हफ्त रोजा शोनेन जम की अशाद 10 लाख से नीचे चली गई। इसका मतलब है कि जापान में अब कोई तबाती जरीदा ऐसा नहीं है जिसकी सर्कुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो। 1968 में अपने आगाज के बाद से मकबूल मांगा सीरीज हफ्त रोजा शोनेन जंप की मांग में मुसलसल इजाफा हुआ था। इसका अरूज 1994 में 65,30,000 कापियां था, लेकिन दीगर जराइद की तरह हालिया बरसों में इसकी प्रिंट सर्कुलेशन में भी कमी आई है।
1: और सामईन, आखिर में आज की अहम खबरों का खुलासा। टोक्यो के मशिक में वाक़ चीबा प्रीफेक्चर में हुकाम ने कहा है कि रिकॉर्ड शदीद बारिशों के बाद एक और शख्स की हलाकत की तस्दीक हुई है, जिसके बाद हलाक होने वालों की तादाद अब 10 हो गई है। अमरीका और जनूबी कोरिया ने पीर के रोज अपनी बाकायदा मुश्तरका फौजी मशकों का आगाज कर दिया है, जिसका मकसद जजीरा नुमा कोरिया में किसी हंगामी सूरतेहाल के लिए तैयारी करना है। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुईं।

ये NHK World जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

समयानुसार 17 अगस्त सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। टोक्यो के पूर्व में स्थित चिबा के अधिकारियों का कहना है कि प्रीफेक्चर में पिछले सप्ताह हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद एक और व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 10 हो गई है। चिबा शहर के अधिकारियों ने बताया कि लगभग 2,500 वाहनों में पानी भर जाने से वो सड़क पर खराब खड़े हैं और उन्हें हटाने का काम जारी है। बृहस्पतिवार शाम को प्रीफेक्चर में भारी बारिश के बादल बनने शुरू हुए, जिससे रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। चिबा शहर में मात्र 12 घंटों में अगस्त महीने के औसत से लगभग 3 गुना अधिक बारिश हुई। हाल ही में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है, जिसकी उम्र 30 वर्ष से अधिक थी। अधिकारियों का कहना है कि बिजली गुल होने के दौरान चिबा शहर में अपने घर पर जनरेटर का इस्तेमाल करने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता से उसकी मौत हो गई। प्रीफेक्चर अधिकारियों का कहना है कि 2 मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, 11 मकान 50% क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 29 इमारतों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। बाढ़ से लगभग 1500 घर प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि रविवार दोपहर 1:30 बजे तक नगरपालिकाओं द्वारा नामित आश्रय स्थलों में 101 लोग रह रहे थे। कोरियाई प्रायद्वीप पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के उद्देश्य से अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने सोमवार से अपना नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। दक्षिण कोरिया में जारी उल्ची फ्रीडम शील्ड नामक यह अभ्यास 27 अगस्त तक चलेगा। उत्तर कोरिया द्वारा रूस में अपने सैनिक भेजे जाने के मद्देनजर इस अभ्यास में संभावित ड्रोन हमलों और साइबर हमलों से निपटने के तरीके भी शामिल होंगे। दक्षिण कोरिया की योनहाप समाचार एजेंसी का कहना है कि वर्ष 2025 के मुकाबले इस साल छोटे पैमाने पर अभ्यास किए जाएंगे। दक्षिण कोरियाई सेना का कहना है कि वो अपनी मुस्तैदी बनाए रखने और रक्षा क्षमता में सुधार करने के लिए पूरे वर्ष संतुलित तरीके से अभ्यास करती है, लेकिन पिछले साल जून में राष्ट्रपति ई जे म्यून के पदभार संभालने के बाद से सेना ने सैन्य अभ्यासों का पैमाना कम करना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि ई उत्तर कोरिया के साथ बातचीत के पक्ष में है। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को संयुक्त अभ्यास पर टिप्पणी करते हुए कहा कि प्योंगयांग आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करके किसी भी खतरे या चुनौती को मिटाने के अपने रुख को और अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि उन्होंने पेंटागन को दक्षिण कोरिया के साथ नियोजित संयुक्त सैन्य अभ्यासों के पैमाने को कम करने का आदेश दिया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि वो इस बात से खुश नहीं थे कि अमेरिका ने बहुत पहले ही दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने पर सहमति जता दी थी। ट्रंप ने जोड़ा, ये अभ्यास काफी महंगे हैं, जिनका अधिकांश खर्च हमेशा की तरह अमेरिका वहन करता है। इसके साथ ही ये उत्तर कोरिया को एक ऐसा संदेश भेजते हैं जो पूरी तरह से अनुचित और शत्रुतापूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि जब से वो राष्ट्रपति बने हैं, उत्तर कोरिया ने उनके प्रति कोई धमकी भरा रवैया नहीं अपनाया है और सम्मानजनक व्यवहार किया है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम के उद्देश्य से हुए समझौता ज्ञापन के तहत निर्धारित 60 दिनों की वार्ता अवधि समाप्त होने के बावजूद दोनों देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों ने जून में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि वार्ता की अवधि 18 जून को शुरू हुई थी, जिसका मतलब है कि वार्ता की समय सीमा रविवार को समाप्त हो गई। वार्ता के विषयों में अमेरिका की समुद्री नाकाबंदी समाप्त करना, होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज़ों की आवाजाही बहाल करना, ईरान का परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंध हटाने के मुद्दे शामिल थे। वार्ता अवधि के दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे पर जवाबी हमले जारी रखे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच ऐसा कोई संघर्ष विराम समझौता कभी हुआ ही नहीं था जिसकी अवधि बढ़ाने की आवश्यकता हो। ईरान ने होर्मुज

भूमध्य को फिर से खोलने के लिए ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने, सैन्य कार्रवाइयों से हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने और अमेरिका की समुद्री नाकाबंदी हटाने जैसी 6 शर्तें रखी थीं। अमेरिका ने 7 जुलाई को घोषणा की थी कि उसने ईरानी तेल की बिक्री की अनुमति देने वाला लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसके बाद उसने 14 जुलाई को समुद्री नाकाबंदी बहाल कर दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 जुलाई को पत्रकारों से कहा था कि उन्हें लगता है कि संघर्ष विराम समाप्त हो गया है। इंडोनेशिया के अधिकारियों का कहना है कि शनिवार को देश के पूर्वी हिस्से में आए भूकंप में 53 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। फ्लोरेस द्वीप के पास आए 7.7 की तीव्रता के भूकंप से 200 से अधिक मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने रविवार को मृतकों की संख्या की घोषणा की। अधिकारी भूकंप के केंद्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में बचाव कार्य में तेजी ला रहे हैं, जहां सड़कें अवरुद्ध हैं। मकानों को नुकसान पहुंचने के बाद 5,000 से अधिक लोगों को पलायन करना पड़ा है। भोजन, पानी, कंबल और अन्य राहत सामग्री की व्यवस्था करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। इंडोनेशिया सरकार का कहना है कि उसने शनिवार रात तक कई क्षेत्रों में विमानों से 27 टन राहत सामग्री पहुंचाई। सरकार का यह भी कहना है कि उसने क्षेत्र में सेना के 3,500 से अधिक जवान और पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। जापान की एक लोकप्रिय साप्ताहिक मांगा पत्रिका की कागजी प्रतियों की बिक्री पहली बार 10 लाख प्रतियों से कम रही। एक समय था जब शुएशा की साप्ताहिक पत्रिका वीकली शोनेन जंप की 65 लाख प्रतियां बिकी थीं। जापान पत्रिका प्रकाशन संगठन के आंकड़ों से पता चलता है कि जून तक की तिमाही में इस पत्रिका की कागजी प्रतियों की औसत संख्या प्रति अंक 9,85,000 रही। घरेलू पत्रिकाओं में आंकड़ा अब भी सर्वाधिक है, लेकिन 2008 में संगठन द्वारा आंकड़े रखे जाने के बाद से वीकली शोनेन जंप की प्रकाशित प्रतियों की संख्या पहली बार 10 लाख से नीचे आई है। इसका मतलब है कि जापान में 10 लाख से अधिक प्रतियां बेचने वाली अब कोई भी कागजी पत्रिका नहीं है। 1968 में अपनी शुरुआत के बाद से एक के बाद एक लोकप्रिय मांगा सीरीज के साथ वीकली शोनेन जंप की मांग बढ़ती गई। 1994 में 65.3 लाख प्रतियों के साथ इसकी बिक्री चरम पर पहुंच गई थी, लेकिन अन्य पत्रिकाओं की तरह हालिया वर्षों में इसकी प्रतियों का वितरण कम हो गया है। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।